0: साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance,
3: we also ship cars,
1: Kailor transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704 pe.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist.
1: HK Movers.
4: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਨ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਟਾਪ ਚੁਆਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, 16 ਇੰਟਰਮੋਲ ਡਰਾਈਵ ਐਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਨੰਬਰ 905-709-0045 5799-0045 Top Choice Electronics।
5: मेरी हाथों में नौ नौ चूड़िया है।
6: आज देख जाने नालों ज्यादा तू सोनी लग रही है।
7: तुसी भी आओ, अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कारब्रो टेक्सटाइल नाल।
6: पाओ सूट्स, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
7: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
6: आज ही पहुँचो
7: स्कारब्रो टेक्सटाइल, 2659 एजलिंगटन एवेन्यू एट एलबीएन। कॉल 416-742-0010 416-742-0010।
8: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन का व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
9: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा दें।
8: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनियां, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
9: हां, नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
8: तो मेरे जीजा ली घड़ी,
9: आहो, अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
8: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 719 एयर रोड मालचंद इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।

0: 647-382-5500.
1: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM सुप्रीम डील डेंटल सेंटर दे नाल
2: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज विजडम टूथ रूट कनाल डेंचर
3: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन क्लीनिंग गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट
1: SM सुप्रीम डील डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट ब्रैम्पटन बोवेट जिंगूसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव यूनिट 17 ब्रैम्पटन कॉल 9057898266
4: लंबे समय तो कम्यूनिटी विच परख्या होया ना एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कम्मा नु समय ते करवाली चेते रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन वधेरे जानकारी लई कॉल करो 6472771735 6472711735 एनी टाइम होम रेनोवेशन
5: टोल जगीरो दा ते टाबा जगीर दा इना दोना दे क्या कहने
6: जगीर दा टाबा इना दे ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन दा है हर कोई दीवारा
5: बटर चिकन गोट करी टिक्का मसाला चना मसाला दाल मखनी
6: मिक्स वेज पकौड़ा स्पेशल फिश बिरयानी बर्गर ते परांठा
5: डिजर्ट्स वेज ते नॉन वेज विच ढेर सारी वैरायटी
6: ते नाले जगीर दी स्पेशल चाय भी ट्राई करियो
5: 1 सीडर ग्रोव रोड मोनो ऑरेंजविल दे विच
6: कॉल 6474003229
5: और विजिट www.jagirdataba.ca
4: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰਾਸੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲਸ ਆਫ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਡਰਾਮੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 5548
7: Punjabi Dil, Angrezi Vibe, CJMR is back alive. CJMR 1320. Aa gaya hoye, cha gaya hoye.
8: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.
9: जमात 1320 एम फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपकी होस्ट हैं दोस्त अंजू सिक्खा पेशे खिदमत है आपकी नजर में आज के मुख्य समाचार सबसे पहले आपका तापमान राइट ना 19 डिग्री सेंटीग्रेड कल हाईएस्ट 24 रहेगा लोएस्ट 11 एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन खबरों की सुर्खियां आप सबकी खिदमत में एक और अरेस्ट हुआ है जो कि 2022 में घातक शूटिंग हुई थी जिसमें एक 31 वर्षीय व्यक्ति स्कार्बरो के प्लाजा के पार्किंग लॉट में मारा गया था उसको लेकर इसके साथ ही साथ आइए बात करते हैं मार्क खानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वो धाकड़ प्लान बिल्ड हेयर एज कंपनी जो है अवॉइड करने के लिए काम करें ट्रंप के लेटेस्ट टैरिफ्स का आइए जानते हैं क्या चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मार्क खानी ने कहा कि वो हमेशा ही तैयार है नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका के साथ प्रोफेशनल मैनर में प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिसेंट डेज में बातचीत भी की है और आज के दिन खानी ने साइन किए मल्टीपल डिक्लेरेशन और इनिशिएटिव यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ और उनका कैलगरी में साथ में कहा हम प्लान करें बिल्ड इन कनाडा और डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यानी कि और अतिरिक्त मुल्क जो है हमारे साथ मिले और यहां पर अपना व्यापार करें और आज ही के दिन कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने अमेरिका में जाकर अमेरिका के मीडिया से टैरिफ फ्री ट्रेड के बारे में वार्तालाप की बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हालांकि उन्होंने किसी भी तरह से कनाडा या फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया आइए जानते हैं कि ट्रंप ने अपनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंगलवार को दिए थे जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन से ट्रेड विद कनाडा सेम डे ऑटवा ने इम्पोज किए नए काउंटर मेजर टेरिफ्स अगेंस्ट यूएस और हालांकि फिर भी कहानी ने कहा कि कनाडा और यूएस जो है एक साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे कनाडा इज ऑलवेज रेडी टू नेगोशिएट कहानी के एक बयान पॉलिवर ने अमेरिका के मीडिया से बातचीत की है बिना कनाडा के लिए कोई भी नेगेटिव बात बोलते हुए कनाडा टू बिल्ड मिलियंस ऑफ ड्रोन्स विथ यूक्रेन यूएस एम्बेसडर हुकेस्ट्रा ने कहा कि कनाडा को अपने आप को टोन डाउन करना चाहिए कनेडियन आर्मी रिस्ट्रक्चर करने जा रही है अपने डिवीजन अराउंड मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टेरिटोरियल डिफेंस को लेकर इसके साथ ही वन टाइम $150 की पेमेंट फेडरल सरकार से मिलेगी जो कि डिसेबिलिटी बेनिफिट होगा कनेडियंस एलिजिबल होने फॉर कनाडा डिसेबिलिटी बेनिफिट CDP प्रोग्राम वन टाइम पेमेंट $150 की ऑफसेट करेगी कॉस्ट अप्लाई करने के लिए फॉर डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट पेमेंट डोल की जाएगी एट द बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर 17 अकॉर्डिंग टू फेडरल अनाउंसमेंट जो कि आज की गई है ऑन्टेरियो साइंस सेंटर ले ऑफ कर रहा है इंटायर साइंस डिपार्टमेंट तो उसमें काफी ज्यादा जॉब्स भी जाएंगी इसके साथ ही साथ मैप क्वेस्ट पोस्ट किया है उन्होंने बिल बोर्ड शिकागो में विद डायरेक्शंस टू द लेक ऑन्टेरियो उन रिस्पॉन्स के जो कि ट्रंप के

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

महकती है सदियां खुशबू का दर है ये शहर मोहब्बत मेरा हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर है दिलचस्प बातें है दिलकश ये मंजर जो मांगी दुआ में मन्नत यही है सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है परियों के महलों के किस्से कहानी झीलों को जोड़े है झेलम का पानी सफर तू बता मुझको चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना इधर है जो मांगी दुआ में मन्नत यही है सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Your home for community. CJMR 1320.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है। मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे

0: तू मेरी सारिया गल्लां ते तौहीन कीता सी, तू मेरी इक ना मन्नी, मैं बोलदा रह गया, मैं तेरी हर गल ते यारा अमीन कीता सी, अमीन कीता सी।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
2: Hey, Sink. Are you there?

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बम रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320.
2: CJMR 1320. This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: Electronics di market de vich mashhoor naam Top Choice Electronics. Itho tusi har company de har size da television, fridge, stove, dishwasher, laundry li washer and dryer de naal agar tusi apne ghar de vich home theater system set up karna hai ya fir ghar di kitchen de vich aalishan appliances lagwana chahunde ho, delivery on time lain li cheti rakho. Top Choice Electronics, 16 Intermall Drive at Airport Road in Brampton. Number 905-799-0045. 0045 Top Choice Electronics.
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
9: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com।
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
11: ਹੋ ਜੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, ਐਲਈਡੀ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079 6477080079।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर साल दी तरह मालटन गुरुद्वारा साहिब विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 सितंबर दिन एतवार नूं हो रहे हन। समूह संगत दे चरणां विच बेनती है परिवारां समेत केसी दस्तारां दुपट्टे सजा के नगर कीर्तन विच हाजरियां भरो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: जीना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो, रैक्सडेल दे विच लुट स्फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लुट स्फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 6745471888। Lotus Funeral Home।

0: कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन लई आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV अपने बिजनेस की प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डिवेलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਫ ਏ ਲੋਇਰਸ।
4: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
3: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।
5: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
6: HK Movers,
5: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
6: For service with a smile, give us a call.
5: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
6: 416-524-6704.
5: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
7: Long distance moving specialist,
5: HK Movers.
8: HK Movers.
9: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਸਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
10: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावा दा काम हो गया जे सौखा। मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते। रियल एस्टेट क्लोजिंग, नोटराइजेशन, एफिडेविट्स, डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स, पावर ऑफ अटर्नीज, बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स। बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700। अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca। रवि गुलाटी लॉ ऑफिस, ठीक सलाह बल्ले बल्ले।

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: सस्ता सामान सस्ता नहीं हाई एंड दा सामान मिले सस्ता
2: अगर थोड़े बेसमेंट दे विच पानी दी लीकेज हो रही है तुसी उस तो छुटकारा पाना चाहते हो तो इको एक नाम नु याद रखना पिछले 25 सालों तो कम्युनिटी दे विच मन्या पर मन्या नाम बेस्ट रेनोवेशन दे सतविंदर सिंह 416-451-4565 25 साल दी दिन देने नाल वारंटी 416-451-4565 ते कॉल करो ते हमेशा हमेशा ली पानी दी लीकेज तो पाओ छुटकारा
3: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे मेरी निक्की भैन दा व्याह मैं तो अपने सारे चाह पूरे करांगी
4: क्यों नहीं चन करे कहे ता सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे
3: ठीक है जी चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने सेट रानी हार छापा मुंदरियां छल्ले बिस्कुट चेनिया वंगा कोके टिक्के कड़े ब्रेसलेट मंगलसूत्र सब कुछ प्योर ते यूनिक
4: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी ता मिंगियां करनियां ने 12 चूड़ियां ओनु भी ले दांगे
3: तो मेरे जीजू ली घड़ी
4: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने
3: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा फोन नंबर है 9056714290
5: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल
6: Wide range of services Wisdom tooth Root canal Denture
7: For dental extraction Cleaning Gum treatment And implant
5: SM Springdale Dental Center 2260 Bovade Drive East Brampton Bovade Jingusi Dental Center 811 Bovade Drive Unit Stara Brampton Call 905-789-8266
8: ਨੁੜਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਮ ਫਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਲੈਮੀਨੇਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਪੋਰਚਲਿਨ ਟਾਇਲਸ ਰਮਿਕ ਟਾਇਲਸ ਫੌਸਟਸ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡੋਰ ਵਿੰਡੋ ਡਰਾਈਵਾਜ਼ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਦਿ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਮ ਫਿਕਸ ਤੇ ਆਓ 2657 ਡੰਡਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 20 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਕਾਲ 9057962555 9057972555 ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਯੋਰ ਹੋਮ ਫਿਕਸ ਕਾਲ ਹੋਮ ਫਿਕਸ

0: पहल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट पहल स्वीट पहल स्वीट पहल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9991।
0: स्वीट महल।
3: ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੀਮ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਉ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-716-7653 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.teammanjeet.ca।
4: डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। जेकर तुहाडा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसे जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तुहाडा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यूंदे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रहियां हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, कचीचियां ना वटो। बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट हो सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला। मानसिक पीड़ां दे नाल शरीरक दर्दां दी मलम डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स। फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800567HURT 4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 4165575010। डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स।
3: This is CJMRAM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तेरे। रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया फेरा वे कंडता खाली कितड़ बहनू रेला आन गिया हूं नी जज जमानत दिंदा।

0: सानू मंजला ना प्यार विरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तू गई।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरियां ने, कुछ मेरियां ने। तेरा मिलना, तेरा विछड़ना, तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा, तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नूं जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनूं, तू जिंदगी किद्दां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किद्दां जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जित्तण ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: कम्मा करा च बिजी हां एदा मतलब ए नहीं कि तन्नू कोई होर ब्याहण आ जुगा मग तू चट दियां ते ब्याहण भी तन्नू फिर चाटी आऊगा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320.
2: CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 0575। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्या, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
9: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com।
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
11: ਓ ਜੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079 6477080079।

याद आया कौन सी पिक्चर है? जी हाँ, गाना सुनिए और बताइए मुझे कि कौन सी पिक्चर का गीत है, तो हम आपको देंगे पिज्जा मशीन से इनामात की झड़ी। नंबर से कॉल 9058131320 CJMA 1320 AM फ्रीक्वेंसी।

0: राजधानी।
1: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: रेड्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

0: TGMR 1320 एम फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपकी होस्ट हिंदो संजू सिक्का और बहुत ही जल्द हम काव्य होमोकेयर की गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा जी के साथ आपकी बातचीत कराएंगे और मीता ओझा जी स्टूडियो की हॉटलाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे.
1: दिस इज CJMR द वॉइस ऑफ द सिटी पार्ट ऑफ व्हाइट ओक्स कम्युनिकेशंस ग्रुप योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स.
0: जी वार्मस्ट वेलकम टू यू.
2: थैंक यू सो मच अंजू जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन. सत श्री अकाल सारेयानु.
0: जी जी सत श्री अकाल आपको भी. मीता जी जानना चाहेंगे आज हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं.
2: अंजू जी आज हम देखेंगे फंगल इन्फेक्शन स्पेशली स्किन को जो अफेक्ट करता है
0: जी.
2: उसके बारे में आज हम देखेंगे जिसको हम टीनिया वर्सिकलर कहते हैं या पिटीरियासिस वर्सिकलर के नाम से ये इन्फेक्शन जाना जाता है
0: जी.
2: ये स्किन का फंगल इन्फेक्शन है. ये फंगस क्या करती है कि जहां पे जितने एरिया में वो ग्रो कर गई तो वो नॉर्मल जो स्किन का पिगमेंटेशन होता है तो
0: जी.
2: उसके साथ ये इंटरफियर करती है और उसके साथ डिसकलर्ड पैचेस बन जाएंगे. या तो स्किन आपकी डार्क बन जाती है, आप देखते हो कि अंडर आर्म एरिया या चेस्ट एरिया में स्पेशली जब ये होता है थाइज एरिया में होता है तो ब्राउनिश कलर के पैचेस बन जाते हैं. और जब आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, एक तरह की फंगस जो है ये ग्रो कर गई है और कभी कभार इसके अंदर ईची भी होती है. एंड सिमिलरली ये जो फंगस है वो ब्लीच का काम भी करती है.
0: अच्छा,
2: तो फिर क्या होगा कि हाँ जितने एरिया में ये ग्रो कर गई तो वो एरिया थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाएगा सराउंडिंग एरिया से. सो स्पेशली आप कह लो कि चेहरे के ऊपर आपको इस तरह के लाइट पिंक कलर के पैचेस दिखेंगे, हाथों के ऊपर लेग्स के ऊपर ये पैचेस दिखने लगते हैं और फिर ये बॉडी में फैलता जाता है. और कई बार पेरेंट्स को भी होता है कि कहीं ये फुलवेरी तो नहीं
0: जी,
2: क्योंकि समर मंथ्स में क्या होगा कि बच्चा बाहर खेल रहा है तो नेचुरल टैनिंग होती है स्किन की, तो ऐसे में ये बीच वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा विजिबल हो जाता है और फिर ये लाइट कलर का, व्हाइट कलर का, पिंक कलर का और उतने पैच में स्किन आपकी रफ बन जाएगी, वहां पे ईची या स्केलिंग सी होती रहती है. सो ये एक तरह का जो फंगल इन्फेक्शन है जिसमें लाइट पैचेस भी होते हैं तो डार्क कलर के पैचेस भी कई बार हो जाते हैं बॉडी में हिस्से में और ये लगातार कुछ मंथ्स तक आपको चलते रहते हैं
0: जी.
2: तो और जो परेशानी आती है वो है रिंग वर्म जिसको हम या ददरी के नाम से जानते हैं. आपकी स्किन पे रिंग शेप के इरप्शंस हो जाएंगे और उसके बीच की स्किन जो है वो नॉर्मल कलर की दिखती है और उसमें थोड़े थोड़े आपको रेड डॉट्स दिखते रहते हैं. उसके किनार से कभी कभार थोड़ा सा पानी भी निकलता है और स्केलिंग भी होती है और काफी सारी ईची, जिनको ये ददरी या रिंग वर्म की प्रॉब्लम है सालों से ये हट नहीं रहा, थोड़ा सा सही होके फिर ये वापिस आ रहा है. तो ये फंगस जो है वहां पे ग्रो करेगी जहां पे हॉट ह्यूमिड एरिया, जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह गए हो, सोना वगैरह है तो वहां से. और फिर लेडीज में हार्मोनल शिफ्ट का टाइम हुआ तो उस वक्त ये ज्यादा आपको फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. इम्यून सिस्टम वीक है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आएगी. और ये जो फंगस है आपके सिर से लेके पांव तक कहीं पे भी कर सकती है इन्फेक्शन. जो स्कल्प में होता है इसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, बड़ी वाली सिकरी या फ्लैक्स निकलते हैं और स्कल्प में ईची होती रहती है. तो एथलीट्स फूट जिसमें आपके पैर में देखोगे कि व्हाइट कलर की स्किन हो जाना और जैसे काफी टाइम से आपके पैर पानी में है तो उस तरह स्केली सी स्किन आपकी हो जाती है और छोटे छोटे कट्स भी हो जाते हैं तो ये सारा जो है वो फंगस करके ग्रो होगा. छोटे बच्चों में डायपर रैश होना, ओरल थ्रश, मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं वो भी एक तरह की फंगस ही होती है. सो यहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये क्या करेगा, आपके जैसे ही आप ये लेते हो कुछ टाइम के लिए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ाता है ये कि बॉडी खुद ही वो फंगस को हटाएगी, उसको खत्म करेगी और फिर आपको ये परेशानी बार बार नहीं होगी. और स्टार्ट करोगे कपल ऑफ मंथ्स में आप देखोगे काफी रिलीफ है एंड कुछ एक टाइम कंटिन्यूअस लेना होता है. और वैसे स्किन पे भी जो प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को बड़ों को तो आमतौर पर उसको एक्जिमा ही कहते हैं, फंगल एक्जिमा. सो फील फ्री टू कॉल अस किसी भी तरह के स्किन रिलेटेड आपको कंसर्न्स हो रहे हैं, कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर 10 Cottrell Boulevard, Unit 104 in Brampton, and we are open 6 days a week, Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. And phone number hai mera 647-760-2779-647-760-2779-79.
0: जी 647-760-2779 कावे होमोकेयर की गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता उदा जी के साथ आप रब्ता कायम कर सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच मीता जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू.
2: थैंक यू सो मच अंजू जी.
0: रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब सीजीएमआर 1320 एम फ्रीक्वेंसी, मैं आपकी होस्ट हूं दोस्त संजू सिक्का, और आइए बात करते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, मिलते हैं. जी रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपकी होस्ट हिंदू संजू सिक्का, और टीवी ऊपर जी थ्यारा सुपर मार्केट की बात करते हैं, जो कि है आपके लिए मिसागा में 3899 चुलौनी सर्कल मिसागा, और जहां पे आप ग्रोसरीज के आइटम्स बहुत ही बढ़िया कीमतों पर वेरी क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल है इनके यहाँ, और साथ ही साथ आप इनसे कोई भी कनेडियन पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी खरीद सकते हैं. राजेश थ्यारा सुपर मार्केट 9058248960 पे कॉल की जा सकती है. लेकर चल रहे हैं आपको हम बहुत ही बढ़िया चाइनीज खिलाने, और वो है एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट, 2648 इस्लिंटन एवेन्यू, इस्लिंटन और एल्बियन के इंटरसेक्शन पे है, जहां पे आप बहुत ही डिलीशियस हाका चाउमीन, हाका चिली चिकन, हाका मंचूरियन, फ्राइड राइस, नूडल्स, बहुत ही कमाल के आइटम्स बनाते हैं ये एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट. नंबर टू कॉल 4167498333 पे कॉल कर सकते हैं. स्कार्बो टेक्सटाइल एंड फैब्रिक, जी हाँ बिल्कुल, उनके सामने एक फैब्रिक का स्टोर है, सूट्स एंड डिफरेंट आउटफिट्स वहां पे, रेडीमेड भी लेटेस्ट स्टाइल्स के अवेलेबल हैं, दैट इज स्कार्बो टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक. नंबर टू कॉल देम 4167420010. ट्रैफिक कोर्ट एडवोकेट्स, अगर आपको किसी लॉयर की तलाश है फॉर ट्रैफिक टिकट्स, म्यूनिसिपल बायलॉज, क्रिमिनल समरी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के कोई इश्यूज हैं, कोई स्मॉल क्लेम्स के इश्यूज हैं, और एक्सीडेंट चार्जेस में अगर आपको केयरलेस ड्राइविंग, स्टंट ड्राइविंग, ड्राइविंग अंडर सस्पेंशन, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस के थर्ड टिकट मिल गई है, और एमटी ऑफेंसेस, सीवीओआर ऑफेंसेस भी हैं, तो फिर जे कलोटी जी को कॉल करें. आपके लिए लोकेटेड है 7920 हुरांटेरियो स्ट्रीट, बफलो प्लाजा, यूनिट नंबर 43 में. नंबर टू कॉल जे कलोटी 4167163461 पे कॉल की जा सकती है. एनआरआई मैरिज ब्यूरो के डेटाबेस में रिश्ते ही रिश्ते हैं, जी हाँ रिश्ते ही रिश्ते हैं. आप किसी भी क्लास, किसी भी क्रीड, किसी भी प्रोफेशन के रिश्तों की तलाश में हैं, और चाहे इंडिया, अमेरिका, कनाडा, तो फिर एनआरआई मैरिज ब्यूरो पे कॉल करें. नंबर टू कॉल 6478886000, 6478886000, एनआरआई मैरिज ब्यूरो. लेकिन चल रहे अशोक ज्वेलर्स पे, और 7198 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में इनका स्टोर है, बहुत ही जगमगाता झील मिलाता स्टोर है इनको जी. रेडो वॉचेस, रोलेक्स वॉचेस बाय करना चाहते हैं, मेन्स डायमंड रिंग्स रोलेक्स के साथ साथ अवेलेबल हैं, मंगलसूत्र रानी हा ब्रेसलेट्स के लिए अशोक ज्वेलर्स 7198 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन, नंबर 9056714290. संधू डेंटिस्ट्री दो लोकेशन है, गोर इब्नेजर लोकेशन 4550 इब्नेजर रोड पे, और शाले लोकेशन एट 510 शाले बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन. एनी टाइप ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट यू आर लुकिंग फॉर, संधू डेंटिस्ट्री, नंबर 9054558585. कोई घर में पार्टी प्रबंध करे है, जी हाँ पार्टी प्लान तो कर ली, पता चल रहा है जी उस दिन तो बारिश हो जाएगी, क्या करें, अब गेस्ट को ना मना कर सकते हैं, ना सब कुछ ऑर्डर किया है, केटरिंग ऑर्डर की, सब कुछ पैसे डिपॉजिट दिए हुए हैं, पार्टी तो बनती है और पार्टी तो होनी ही होनी है, वो कैसे, इन्फिनिटी टेंट्स एंड डेकोर को कॉल करें जी. इतने अच्छे टेंट्स लगाएंगे, बारिश होगी लेकिन टेंट के अंदर नहीं होगी, बिल्कुल बहुत अच्छा, और काफी हाई टेंट्स हैं इनके, तो आपको ह्यूमिडिटी भी नहीं होती. टेंट, टेबल, चेयर्स, एलईडी डांस फ्लोर, 360 कैमरा, फ्लावर डेकोरेशन, जंपिंग बलून स्लाइड एंड मच मच मोर इज अवेलेबल. कॉल दिल प्रीत बल 6477080079, 6477080079. बेस्ट रेनोवेशंस की बात करते हैं, जी हाँ लंबा 25 साल का तजुर्बा है, और इनकी टीम का सतविंदर जी को कॉल कर सकते हैं, 25 साल का तजुर्बा, कोई बेसमेंट की लीक की रिपेयर्स है, कंक्रीट और एक्सटीरियर वर्क है, कोई भी काम करना चाहते हैं, नई साइड एंट्रेंस डोर, विंडो इंस्टॉलेशन, विंडो ड्रेन्स, या फिर कोई कंप्लीट कोई प्रॉपर परमिट्स के साथ काम करते हैं, काम बहुत ही प्रोफेशनल करते हैं. मेरी भी बेसमेंट में लीकेज थी, तो बेस्ट रेनोवेशंस के सतविंदर जी ने आए, उनकी टीम ने फटफट फटफट काम किया, اور دعویٰ بھی کیا کہ لیکیج نہیں ہوگی. ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے لیکیج کیونکہ انہوں نے وارنٹیز جو دی ہوئی ہیں ہمیں. کال ستوندر 416-451-4565 پہ کال کی جا سکتی ہے. بات کروں گی میں اوریکل کنسٹرکشن کی. جی ہاں, اوریکل کنسٹرکشن یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ گورو کی کمپنی ہے اور بانڈیڈ اور انشورڈ کمپنی ہے. بھائی ایسی کمپنیوں سے ہی کام کرانا چاہیے. ہم پیسہ لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں تو ہم ایسے پیسہ لگانا چاہیے کہ پتہ چلے کام جو ہے وہ ہوگا ہی ہوگا, کام ہوگا ہی ہوگا. وہ ہے اوریکل کنسٹرکشن. بالکل کمپلیٹ ایکسٹیریئر کنسٹرکشن میسنری سولوشنز ہیں ان کے پاس. سٹون ورک ہے, میسنری ہے, ورک انٹر لاکنگ ہے, پیونگ ہے, پول بنانا چاہتے ہیں, پول کے سراؤنڈنگ میں لینڈ اسکیپنگ خوبصورت سے کرانا چاہتے ہیں, لان اینڈ سوڈ انسٹالیشن, آؤٹ ڈور لیونگ اسپیس کوئی ہے, پراپرٹی ٹرانسفارمیشن اینڈ مچ مچ مور اویلیبل ہے. آپ کے گھر کی جو ایکسٹیریئر ہے باہر, فرنٹ یارڈ اینڈ بیک یارڈ بہت ہی خوبصورت کر دیں گے. حوالہ دیجیے رنگلا پنجاب کا, اسپیشل ڈسکاؤنٹ پائیے. اینڈ نمبر ٹو کال 416-474-6836 پہ کال کر سکتے ہیں. اوریکل کنسٹرکشن ابھی کال کریے ان کو. جو ابھی کال کریں گے رائٹ ناؤ ود ان این آور تو ان کو اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا. سو کال اوریکل کنسٹرکشن ناؤ مینس ناؤ. کال کرنے کے بعد مجھے بتائیے بھی کہ آپ نے کال کیا. 416-474-6836 رنگلہ پنجاب کا حوالہ دیجیے گا ضرور. اوریکل کنسٹرکشن مٹھارو ویلڈنگ سروسز 98 ردرفورڈ روڈ یونٹ نمبر 1 برامٹن میں ہے. مٹھارو ویلڈنگ سروسز ایلومینیم فرنٹ بمپرز کسٹمیڈ, ایلومینیم ڈیئر بمپرز کسٹمیڈ اور موز بمپرز کی ریپیئر ویلڈنگ کی جاتی ہے. بہت ہی پروفیشنل ان کے مکینکس ہیں جو آپ کے لیے پورا کا پورا کمپلیٹ آپ کو سیٹسفیکٹری ورک کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. 98 ردرفورڈ یونٹ نمبر 1 اینڈ دیٹس مٹھارو ویلڈنگ سروسز. نمبر 6474606355 مٹھارو ویلڈنگ سروسز. آئیے بات کرتے ہیں شاہ ٹرانسپورٹ کی. جی ہاں, شاہ ٹرانسپورٹ اور ان کو جو ہے ان کا 5758 ڈکسی روڈ انٹرسیکشن پہ, 401 ڈکسی پہ ان کا یونٹ اویلیبل ہے. ان کو ڈرائیورز کی تلاش امیڈیٹلی ہائر کر رہے ہیں. اونر آپریٹرز ٹیمز, کمپنی ڈرائیورز کی ٹیمز, کمپنی ڈرائیورز سولو, کنسسٹنٹ جاب اپرچونیٹی لاریڈو ٹیکسز رن کے لیے اویلیبل ہے. بہت ہی بڑھیا مائلج آپ کو ملے گی اور ریلائبل ورک کنڈیشنز ہیں. سو کال سندیپ 416-903-8390 پہ کال کی جا سکتی ہے. لالی سویٹس اینڈ تندوری ریسٹورینٹ, لالی سویٹس اینڈ تندوری ریسٹورینٹ ویج نان ویج کوزین دونوں بہت ہی اچھے تیار کرتے ہیں. بھائی ان کی تندوری مچھی اور ان کی جو فرائیڈ امرتسری مچھی نہیں ٹرائی کی, یو آر مسنگ آن اے لاٹ. پکوڑے بہت ہی بڑھیا لاجواب بناتے ہیں جی لالی سویٹس اینڈ تندوری ریسٹورینٹ. اینڈ ان کا نمبر ٹو کال 905-450-6464 پہ کال کی جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیلیجن پیونگ, کیلیجن پیونگ ریزیڈینشیل کمرشل انڈسٹریل ڈرائیو وے پارکنگ لاٹ ٹرک ٹرمینل سروس اسٹیشن بنوانے ہیں, کوئی ایکسکویشن یا پھر گریڈنگ کا کوئی بھی کام ہے, فارم ڈرائیو وے پیونگ کرانا چاہتے ہیں تو پھر جس بل جی کو کال کریں. وہ کیلیڈن پیونگ سے ہیں. نمبر 416-818-8900 پہ کال کی جا سکتی ہے. دیٹ از کیلیڈن پیونگ. گیت آپ کے لیے کیوں کیا ہوا ہے, بہت ہی پیارا سا گیت ہے اور اس کے بعد میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی اپنا نیوز بلٹن. سو یو آر واچنگ اینڈ لسننگ ٹو ریڈیو اینڈ ٹی وی پروگرام رنگلا پنجاب. If you want to get connected with us, 416-520-3699. Enjoy this beautiful number.
3: Toronto. You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.